धाम का प्रवर्तन कुमार मंदिर बलन आदेश को तो हनुमंता देवता प्रभाकितो भांदुं को भांदुं जावरास्ती भांदुं सर्पगण फुले भांदुं नक्तल सत्या भांदुं और राति राग मदन मोहिनी इनी खंदुरे जाला खंदुरे मल खंदुरे सेडस लंग बल बल वर वर कामिनी मदरे किनी आउला खाम किनी मगुरु आस्य नंग चलित कर